में छे। उस परमात्मा अकाल पुरख की उस तत्वड़ियाई दसी है। भगत कबीर जी कहते ने, हे भाई आ उस सतगुरु की पूजा कर, उसकी आरती इंज गायन कर जिमें के ओ परमात्मा अकाल पुरख वड्डा है ते उसनु याद भी वड्याइयां दे नाल कर। हुण सतगुर की पूजा की है, सतगुर की आरती की है। प्रोफेसर साहब सिंह जी ने इन्हां शब्दां दे अर्थ बड़े सुंदर कीते ने। लिहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई गुरु की आरती, सतगुर की आरती, गुरु की पूजा, गुरु के हुक्म मुताबिक चलना, गुरु के दसे मार्ग से तुरना, जिमें गुरु चलावे उवें चलना, ते गुरु के बाणे विच गुरु की रजा विच रहना, यह गुरु की आरती है। ते गुरसिख नेता प्रति उस मालिक की आरती विच जुड़िया रहिंदा है। ते कहिंदे ने आरती है, आरती करके परमात्मा की पूजा करके परमात्मा नूं रजा के उहदे कोलों कुछ मंगना, इहनूं कहिंदे ने आरती। परमात्मा कोल कुछ डिमांड करनी, कुछ जाचना करनी, उहदे अगे अरदास करके उहदे कोलों कुछ मंगना है। सो सतगुरु जी ने ख्याल बड़ा सुंदर दिता है। कल आपां गगन में थाल अता शबद वजंत पेरी रहाओ, इथों तक आपां विचार सरवण कीती सी। आओ अगले तुकां दी विचार अज आरंभ करिए कि सतगुरु जी ने सानू इस विच उपदेश कैसा दिता है ते भगत कबीर जी की कह रहे ने। इधर भगत कबीर जी ने बाणी विच कुछ आरती दे वचन कहे ने, इधर धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने आपां दोनां नूं सरवण करना है कि उस मालिक की पूजा उस मालिक की आरती किवें कीती जा सकती है। सहस तव नैन नन नैन है तोए, कौ सहस मूरत नन्ना एक तोही। सहस तव नैन नन नैन है तोए, हे परमात्मा तेरे सैकड़े अनेक ही नैन हैं, हजारां दी गिनती विच तेरे नैन हैं। सहस तव नैन, हुण फिर अगे लफज आ गया है, सहस तव नैन नन नैन है तोए। हे परमात्मा तू प्रगट भी है ते तू गुप्त भी है। जिवें तेरे हजारा नैन हन ते अकाल पुरख होण दे नाते तेरा कोई भी नैन नहीं है। हजारा तेरिया अखां हन लेकिन तेरी कोई भी अख नहीं है। सहस तव नैन नन नैन है तोहे, कौ सहस मूरत नना एक तोहे। एक पासे कहिंदे ने तेरिया सहस मूर्तां ने हजारां, पर हे अकाल पुरख जे तेरी वडियाई वल जुड़िया जाए तेरी कोई मूर्त नहीं है, क्योंकि तू मूर्त तो रहता है, तेरा कोई चिन्ह चक्र नहीं है, तेरा कोई आकार नहीं है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने

सब में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है, हर था रमिया होया है, इस तरह तेरी जोत सारिया विच व्यापी हुई है। तिस तै चानन सब में चानन होए, कहने सारिया अंदर चानन प्रकाश हे मालक तेरी जोत दाई है। तिसकै चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारिया अंदर प्रकाश है। एक चानन है, पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जदों गुरु दी कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, ते फिर की हुंदा है,

हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालिक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनाने वाले परमात्मा, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जति जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के, तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप किया, बड़ी बड़ी भगती की, सिद्ध समाध समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना ले सके। फिर की होया, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहते ने आकर हार के तेरी शरण विच आ पाए, तेरी शरण विच आ डिगे, तेरे चरणां नाल लग गए कि हे मेरे मालक असी तेरा अंत नहीं पा सके। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई जे वह अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक दे चरणा विच डिगना पिया, ते तू ही उस लैण ते ना तुरी, तू ओ आरती करनी है जेड़ी आरती तेनों गुरु ने समझाई है। केड़ी आरती है? सतगुर पूजो पाई। आप ही अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणों ना लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठांडा बरमा निगम विचारे। आरती उसकी करनी है जिसके दरबार विच बर्मा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत वड्डा देवता है, पर ब्रह्मा भी उसके दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा बर्मा निगम, निगम का भाव है वेद। ठांडा बर्मा निगम विचारे, अलख ना लखया जाए। क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बाहर है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं कीते जा सकते। अलख ना लखया जाए, वो अलख है जो लखया नहीं जा सकता। अगे भगत कबीर जी कहते ने, तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे पुजारा, जोत लाए जगदीश जगाया, पूजे पूजन हारा। कहते ने, हे मेरे मालिक, तेरी आरती की समझ कोई बिरला ही जान सकता है, किसे बिरले की ही समझ ये गल आ सकती है, कोई बूझे बूझन हारा, कोई इस गल नू बुझ सकता है। हर किसी के बस का रोग नहीं कि तेरी इस आरती नू समझ सके। हुण कहिंदे ने, ख्याल करना, मैं कल भी जिक्र कर रहा सा, तीन चार चीजा का दीवा बालन लई तीन चीजा की लोड़ हुंदी है, तेल दीवा ते बत्ती। पर इत्थे भगत जी कहिंदे ने, हे मेरे मालक, तत तेल नाम की आबादी, मैं जिहड़ा तेल पाया ना इत्थे, तत दा भाव है ज्ञान। तत तेल, मैं ज्ञान रूपी तेल पाया, नाम किया बाती, कहिंदे ने जिहड़ी विच बत्ती है ना, वह मैं नाम दी पाई ते इस शरीर नू दीपक बनाया। ध्यान देना, हुण इत्थे दीपक आटे दा नहीं है, मिट्टी दा नहीं है। कईयां ने अपनी समर्था मुताबक स्टील दा, कोई चांदी दा, ऐसे इत आदक दीवे बना लेंदे ने। पर भगत कबीर जी कहिंदे ने, हे मेरे मालिक, मैं ज्ञान दा तेल पाया, नाम दी वट्टी पाई है, इस शरीर दे अंदर दीवा बना के कीता की है, तप्त तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजाला। फिर मैं इस तन नू दीपक बना लिया, ते हे मेरे मालक, हुण तू कर कृपा मेरे ते, जोत लाए जगदीश जगाया। ए जोत कदों जगी? जदों असी जगत तारन हार दे नाल जुड़ गए, क्योंकि जब तक परमात्मा नाल जुड़िया ना जाए, जोत नहीं जगती। आ तुसी वेखदे हो, कई बार तीन चीजा होण, दीवा बत्ती तेल, जब तक बालन वाला ना ना होवे, दीवा नहीं बनता।
दीवा अपने आप कदी नहीं बलिया। दीवे विच एक चीज की भी कमी हो जाए दीवा नहीं बलना। जब तक उन्हें तिना चीजा ना मेल ना हो दीवा बत्ती तेल हूं तिना बत्ती कढ़ दियो तेल ते दीवा रह जाए दीवा नहीं बलना। हूं बत्ती विच रख के तेल ना पाओ बत्ती ते दीवा हो दीवा फिर भी नहीं बलता। जे असी कही बत्ती ते तेल का संबंध जोड़ दईए दीवा ना हो दीवा फिर भी नहीं बलता। तिने चीजा ना मेल है पर जे तिने चीजा होण दीवा भी होवे विच बत्ती भी होवे तेल भी पा दिता जाए दीवा फिर नहीं बनता। बालण वाला चाहिदा है। भगत कबीर जी कहते ने हे मेरे मालिक ए मेरा दीवा तां बलना है ए जोत ने उजियारा तां करना है जद तक तेरे नाल संबंध नहीं जुड़ना। तेरे नाल संबंध जुड़ेगा ते ए दीवा बलेगा। कर कृपा जोत लाए जगदीश जगाया बुझे बुझना। कोई बिरला इस गल नूं बुझदा है कि यह जिहड़ी जोत है मालक नाल रल के जगाई जा सकती है। अगे भगत कबीर जी कहते ने पंचे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग पाणी पंचे शब्द अनाहत वाजे ए अनहद वाजी जो मेरे अंदर एक रस एक तार वज रहे ने क्योंकि मालिक तेरी कृपा हो गई। पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग बाणी जिमें बाणी विच जिक्र आउंदा है पंचे शब्द बजे मत गुरमत वडभागी अनहद बजे। अनहद यह जिहड़ा अनहद नाद है यह अंदर वजदा है ते भगत कबीर जी कहते ने मालक तेरी कृपा मेरे ते हो गई पंचे शब्द अनाहत वाजे एक रस एक तार वज रहे ने ते ए पंच वाजे केड़े ने पंच साज केड़े ने तत्ती साज ते साध संगत चमड़े नाल मड़े हुए साज ते कुछ धातु दे बने साज ते कुछ कड़ा इत आदक ते कुछ फूक मारन वाले साज ये पंज प्रकार की साज पंचे शब्द जिन्हों कहते पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पाणी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार। हे मेरे मालिक तू मेरी ए आरती प्रवान कर लै मैं ते तेरी इस प्रकार आरती सही समझी है। ते साध संगत कल जिक्र चल रहा सी उस आरती दा मन बनिया किसनू संपूर्णता विच कीता जाए फिर तन्ना जी दा भी जिक्र बड़ा सुंदर चलिया। सैन जी ने बड़ी सुंदर गल की धूप दीप कृत साज आरती। सैन जी कहते ने इस आरती नू करन वास्ते चार चीजा की लोड़ है धूप दीप कृत साज आरती। धूप अगरबत्ती दीवा ते थाल घ्यो पा के जिन्हू जलाया जाता है यह चार चीजा जिन कहते ने कठियां हो जान फिर यह दीवा बाल के आरती की जाती है। लेकिन यह जिहड़ी आरती हिंदू मत अनुसार होंदी है उहदा कुछ जिक्र मैं अज पढ़ रहा सां। इस प्रकार मिलिया कहिंदे ने चार वरी यह जिहड़ा थाल है ना चरणा ते कमाया जाता है चार वरी ते दो वरी यह नाभी तक इस थाल नूं कमाया जाता है ते उपरंत एक बार मुंह ते मुख ते कमाया जांदा है ते साध संगत उस तो बाद सत वार पूरे शरीर नूं बार बार कमाया जांदा है। ते जेकर ऐसा मिलिया कि इहदे विच थाल विच जिहड़े दीवे ने एक तो लैके सौ तक रखे जांदे इह नहीं कि एक दीवा एक नहीं एक तो लैके सौ तक इहनां दी गिनती है इह उहनां दी मर्यादा है। पर सतगुरु कहण लगे भाई तू ऐसा दीप बाल जिहड़ा बुझी ना हमेशा जगदा रहे इसलिए उन्होंने साड़ी चोली विच ए दान पा दिता। हुण भगत तन्ना जी की कहिंदे कहिंदे ने हे मालक परमात्मा गोपाल तेरा आरता हे गोपाल मालक अकाल पुरख मैं तेरे अगे आरता इसलिए कर रहे हैं कि मैं तेरे कोल कुछ डिमांड मंगनी है मैं तेरे कोल कुछ मंगना चाहना हां। हुण लफज आरता क्यों आया है
کیونکہ اگے لفظ آرتی چل رہا ہے. یہ آرتا کیوں ہے؟ یہ نہ سمجھ لینا ایک کاب رس ہے. جی میں کبھی کوئی کاب لکھتا ہوئے نا انہیں اپنے فکرے نو لبانا ہوں. ہن اگے لفظ کی ہے؟ گوپال تیرا آرتا جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کاج سوارتا. کیونکہ لفظ تا پورا ہوندا ہے. اے داس تنے والوں ہے مالک تیرے اگے بنتی ہے. گوپال تیرا آرتا کس لئی؟ جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کاج سوارتا. ہن ایک گل میں تہاڈے سمکھ یہ رکھنا چاہنا, भगत तन्ना जी ने इथे विश्वास दसे भई जेड़े तेरे परमात्मा भगती करदे ने मैनू यकीन है, मैनू भरोसा है, मैनू अकीदा है, तेरे ते फेत है, तू उन्हां दे कार्ज आप सवारना है. तिनके कार्ज सवारता. हुण कहिंदे ने मेरियां मंगां की ने? सत्संग ध्यान देना.

हे परमात्मा अकाल पुरख मैं तेरे दर तो आरता करके ए दात मंगदा हां दाल सीधा मांगो कियो। दाल तुसी सारे जानदे हो जिन्हों दाल ते रोटी दा सेंस दुनिया दा सब तो वड्डा है। कहिंदे दाल ते सीधा कहिंदे ने आटे नू, दाल सीधा मांगो कियो, हे परमात्मा क्यों भी दे। हुण ए जे तीन चीजां तू मैनू दे दे हमरा खुशी करे मित जीओ, मेरा मन बड़ी खुशी नाल तेरी भगती करेगा। साध संगत ए ते बिल्कुल सियाणी गल है, ओ जिहदे घर खाण नू ना होवे उहनूं भगती कित्थे सुझदी है, उहदा मन कुड़दा रहिंदा है। कहिंदा हे परमात्मा एवें संसार विच भेज दित्ता ही, खाण नू ते दित्ता कुछ नहीं, जे कुछ खान नू देवे तो तेरी भगती करा, हुण खान नू ते लभदा नहीं तेरी भगती की करा। इसलिए भगत तन्ना जी कहिंदे ने हे मालक तेरी भगती भी तां होवेगी मैनू ए चीजा दे, दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे, मेरा मन बड़ी खुशी नाल तेरी भगती करेगा। हुण भगत जी कहिंदे ने इत्थे ही बस नहीं, हे परमात्मा कुछ मंगा होर भी ने। बनिया छादरनी का अनाज मंगो सब सीका, बनिया दा पाव है पैर, हे मेरे परमात्मा मैनू पैरां दी जुत्ती बड़ी आला चाहिए है। बनिया छादरनी का, हुण छादर कहिंदे ने तन दे कपड़ियां, पैरां दी जुत्ती अच्छी होवे, तन ते कपड़ा अच्छा होवे, सिर ते पग सोहनी होवे, वेखण वाला भी कहता कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी आया है, क्योंकि अड की दुनिया की निगाह सिर तो लैके पैरों तक जाती है। तो भगत कहता हे परमात्मा जिहड़ा मैनू वेखे वो मैनू वेखद्या तेनू याद करे, मैनू वेखद्या तेनू याद करे। जे परमात्मा का भगत ऐसा है तो परमात्मा क्यों पनिया छादन नीका अनाज मंगो सत सीका, पैरां दी जुत्थी अच्छी होवे, तन दे कपड़े अच्छे होण, ते अनाज सोहनी धरती वाई दा मैनू चाहिदा है, अनाज भी इहो जिहा ना होवे अच्छी धरती वाई दा। अनाज मंगो सत सीका, फिर कहिंदे ने गौ भैंस मंगो लावेरी इक ताजन तुरी चंगेरी, हे मेरे मालक इक गौ चाहिदी है इक भैंस चाहिए। पर सजल सुरी सजल सुई हुई कहने एहो जी मैनू दे देवे, गौ भैंस मंगो लवेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। तुरी कहने अरबी घोड़ी, तेरे भगत नू घोड़ी भी चाहिए है असवारी वास्ते। बस हुण इंज समझ लो उस वेले घोड़ियां सन, इस वेले आ मोटरां कारां, कितनी कितनिया महंगिया कितने कितने नाम ने उन्होंने जिहड़े गिणे नहीं जाने, पर उस वक्त अरबी कौड़ी सब तो आला गिणी जाती सी। गौ भैंस मंगो लवेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। अंत विच कहिंदे ने हे परमात्मा आ डिमांड ध्यान नाल सुनी, कर की केहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी। भगत ने परमात्मा नू आरती करके खुश कर लिया, इंज कह लो भगती करके खुश कर लिया। जो हुण परमात्मा खुश है, परमात्मा कहिंदा भगता जो मंगी जाएगा दे जाऊंगा, क्योंकि उन्हें अपने वस विच कर लिया। कहिंदे ने हुण जिहड़ी डिमांड अज सामने रखी कि अंत विच मैनू घरवाली चंगी चाहिए है, क्योंकि घरवाली का बहुत साथ हुंदा है भगती विच। जे घरवाली ना चाहे तो खिमा करना भगती बहुत औखी है, बहुत कठिन है। यह जिन्हें भी भगत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब बैठे ने उन्हां दियां घरवालियां दा साथ है, क्योंकि घरों साथ होना जरूरी है। इसलिए घर की गहन चंगी जन तन्ना देवे मंगी, तन्ने ने मंग के लई। हुण अगे चलिए, भगत कबीर जी इस आरती नूं कहिंदे होए कह रहे ने कि हे परमात्मा मैं तेरी आरती इसे लई कीती है कि मैं भी ग्रस्ती हां, मैं भी बाल बच्चरदार हां, मैनू भी कुछ चाहिए। हुण परमात्मा कोलों की मंगे है, भगत कबीर जी बड़ा सुंदर कहिंदे ने, आओ सरवण करिए।
سورٹ بھوکھے بھگت نہ کیجے یہ مالا اپنی لیجے. بھگت جی نے گل بڑے کمال دی آرام کی, کہندے نے اے پرماتما اکال پورکھ آلا پھان اپنی مالا بھوکھیا تو بھگتی نہیں ہوندی, کیونکہ من رجا ہوئے تن رجا ہوئے بھگتی بھی پھر ہی ہوندی. بھکھے تو بھگتی نہیں ہوندی, پھڑ لے اپنی مالا میں نہیں تیری بھگتی کر سکتا. سورٹ بھوکھے بھگت نہ کیجے یہ مالا اپنی لیجے پھڑ مالا. پر کہتے نہیں میری مانگ کیسی ہے, ہاں مانگو سنتن رہنا میں نہ ہی کسی کا دینا. کہتے نہیں میں تیرے کو مانگنا سنتان دے چرنا دی دور, اے میرے مستق تے لگ دی رہا ہے. ہاں مانگو سنتن رہنا.

लंदेनु थारू जो आए शी वेख्या संसार ते बड़े जुलम तहरे हन जे शक्ता शक्ते को मारे ता मन रोश ना होई ता कोई रोश नहीं पर गरीब जनता नु लताड़िया जा रहा सी। लहू दियां नदियां बहाइयां जा रही सन सैदपुर दे पठान जो हिंदुस्तान ते काबज सन जनता नु लिताड़ रहे सी। बड़ी दुखी सी जनता बड़े हंकारी हो गए सन। निरंकार दी लीला है पाप की जंज लै काबलों गाया जो के निरंकार दा खेल है। ए बाबर ने भी राज भाग करने सी आके ते काट इस भी ना कीती हिंदुस्तान ते आके बड़े जुलम ढाए जिथे सैदपुर दे पठाना नू सजा मिली उथे फिर गुरु नानक साहब सचे पातशाह बाणी विच दस रहे हन जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगे दान वे लालो। मुगलां ने आके चढ़ाई कीती ते फिर जोर दे नाल आके दुनिया कोलों धन दौलत सब कुछ खो लिया। गरीबां दे लहू बहाए जिथे शाहूकारां नू लुटिया उथे संतां साधुआं फकीरां नू भी पकड़ के अपने कैदी बना लिया। ते जगत जलंधे नू थारन लई आए निरंकार दा रूप कोट ब्रह्मंडा दे मालिक सुख क्यों देना सी संसार नू। आप भी इस टोले विच हो विचरे जो कुछ लुटिया सी ए माल तन चुकन लई लोड़ सी उना नू ते सारिया दे सिरां ते पंडा रख दितिया ते अगे ला लिया। धन गुरु नानक पातशाह जी दे सिर ते भी पंड रख दिती पर इना ने की तकिया के धन गुरु नानक पातशाह एक हाथ विच माला है दूजे हाथ विच काशा है ते पंड चार उंगलां सिर तो ऊपर चल रही है। सिपाहियां ने जाके अपने सरदार नू दस्या भई एक फकीर ऐसा अजमत वाला है जिसने हाथ भी नहीं रखिया होया ते पंड नाल नाल चली आ रही है सिर ते उचारण करो श्री वाहिगुरु। इना ने जिथे लुट दा माल कठा कीता होया सी नाल ही एक कैद खाना भी बनाया होया सी जिथे चक्कियां रखियां हुईयां सन फौजां दे आटा पीन दई। सारिया नू कणकां दित्तियां गईयां भई चक्कियां चलाओ भई ते आटा पीवो। धन गुरु नानक पातशाह जी नू भी दित्ती गई ते गुरु नानक सचे पातशाह जिन्हां ने अरदास कीती सी जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वारे उभरे तिते ले हो बार। हे निरंकार तेरी सृष्टि इतना दुख भोग रही है इतनी कुरला रही है कृपा कर इना नु सुख सुखी कर। धन गुरु नानक पातशाह मरदाने नु कहन लगे मरदानिया तेनू चक्की चलाउन दी लोड़ नहीं तू परमेश्वर दा सिमरन कर। रबाब वजा बाणी आई है ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने ए शब्द उचारण कीता ए एती मार पई कुरलाने तै की दर्द ना आया। हे निरंकार कृपा कर प्रजा ते बादशाह दा की मेल होंदा है प्रजा दे गरीब बंदियां दा ते बादशाह दा मेल इस तरह है जिवें एक शेर गौआं दे वग नूं अगे ला लवे
पर उसका रखवाई उदी रखवाली करता है। तू कृपा कर इस जगत जलंदे नू सुखी कर। एक अरदास कीती जा पादशाह बाबर नू पता लग्या कि एक ऐसा अनोखा फकीर आया है कैदी बन के, जिदी चक्की आपे चल रही है, आप ओ गले विच दाने भी नहीं पा रहा, आपे ही दाने पै रहे हैं ते आपे ही पीछे जा रहे हैं। ता आके जदों दर्शन कीते, दर्शन कर दिया आत्मा शुद्ध हो गई। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। बाबर ने कहा, हे बंदे खुदा दे तू कौन है? धन गुरु नानक पातशाह कहन लगा, मैं कोई होर नहीं, मैं भी उसका एक मामूली बंदा हां, पर तू बंदियां वाले काम नहीं कर रहा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे बाबर नू, भाई तू भाई खुदा दा बंदा है? आखे जी मैं खुदा दा ही बंदा हां। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, जेड़े खुदा दे बंदे होंदे हन ओ खुदा दे बंदियां ते रहम करदे हन, जुलम नहीं ढांदे। जे किते बाबर खुदा दा बंदा होंदा तां फिर ए पशुआं वांगू दुनिया नू मारदा ना, लिताड़दा ना, निरादर ना करदा। खुदा दे बंदे विच खुदाई होंदी है। खुदा संसार विच वस रहा है ते संसार खुदा विच वस रहा है। जे संसार नू दुख देईए तां ओ दुख उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू पहुंचदा है। तू निर्दोष प्रजा नाल क्यों एहो जे जुल्म कर रहे हैं? हुण सिपाही हुक्म दी उडीक विच हन, भाई अज इसका छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि एडी वड्डी गल कर रहे है फकीर। पर बाबर दा मन झुक गया जदों अपने अंदर दा शीशा वेख्या कि जिस वाहिगुरु ने, जिस अकाल पुरख ने एडे सुख दिते, एडिया वड्याईयां दित्तियां, ते मैं उसकी साजी हुई सृष्टि नूं सुख ना देवां, लताड़ां ता ओ मैनू किवें परवान करेगा? उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। सतगुरां दे एक छन तां कौड़े बचन, पर असल विच उदे जीवन लई एक रोशन मुनारा सन। चरना ते डिग पिया, खुदा वालिया मेरे कोलों भुल हो गई है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने उस वेले अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणा विच बेनती कीती, हे निरंकार कृपा कर इस जगत जलंदे नू रख लै, इना जीवां नू सुमत बख्श। ए पुन्ना करके बादशाह ता बन जांदे हन, पर तेरी कृपा नू, तेरी होंद नू ए भुल जांदे हन।

अति बख्शो। बाबा जी कहने लगे भाई अमृत वेले जाग के इशनान करके पहला नित नेम करया कर, पहला अपने ईश्वर दी आराधना कीती कर, जिस वाहिगुरु ने तैनू एडी पदवी बख्शिश कीती है, जज दी कलम फड़ाई है, ए कोई थोड़ी गल नहीं, जीवां दा इंसाफ कर दे तू। ते जदों इंसाफ करन लगे ना, जदों किसे नूं सजा सुनान लगे, ता मगर वेख लिया कर परमेश्वर तेरे कोल खलोता हुंदा है, ओ मालिक वेख रिया हुंदा है। जे ता तू रहम दी कलम वाह रहा है, ता उथे जाके तेरे ते भी रहम दी कलम वाहेगा। ओ चारण करो श्री वाहेगुरु। ते जे तू जुलम दी कलम वाह रहा है, ता याद रख तू भी नहीं बख्शा जावेगा, क्योंकि दंड तो पापी नू देना। ते जे कोई जिसने अपराध भी नहीं किया ते उसनू दंड दिता होया, फिर सजा दा भागी ओही हुंदा है जिसने जुलम दी कलम वाही हुंदी है। तो इसलिए इस शब्द तो असी प्रेरणा लेनी है कि जिस वाहिगुरु ने सानू धन दौलत दुनिया दे सुख ते उच्चे मरातबे बख्शिश कीते हैं, असी उदे निर्मल भाव विच रह के सच दे इंसाफ करने हैं, सच दे राह ते चलना, जिया ते दया करनी है, भला करना है, संसार दी सेवा करन लई धन गुरु नानक पातशाह ने सानू प्रेरणा दिती है। आख्या भाई जे दरगाह विच अपनी थां चाहुणा है, तां विच दुनिया सेव कमाईए, तां दरगाह बैसन पाईए। जे दरगाह विच भाई सुरखरू होना चाहुणा है, तू चाहना मेरा मुख इथे भी उजड़ा होवे, दरगाह विच भी जदों जावा उजड़ा होवे, तां फिर भाई सेवा और सिमरन कर। महापुरख बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहन लगे भाई जदों इंसाफ दी कलम वाहन लगना है ना, वेख लिया कर तेरे ऊपर भी कोई खड़ोता हुंदा है। ओ कौन वेख रहा है? ओ अकाल पुरख वाहिगुरु वेख रहा है। जे ता तू रहम दी कलम वाह रहा है, ता तेरे ते भी रहम दी कलम वाही जाएगी। ते जे तू जुलम दी कलम वाह रहा है, ता उस दी कलम तो तू ही नहीं बच सकेगा। इसलिए धन गुरु नानक पातशाह जिन्हां दे हिरदे विच सारे संसार दे जीवां दा दर्द सी, जगत जलंदे नूं ठारन जो आए सी, बैकुंठ दे सुखां नूं त्याग के भी आपने अपने आप नूं कितने पवजलां विच पाया, समर्थ पुरख होंदे होए भी, कोट ब्रह्मंडां दे मालक होंदे होए भी सिर ते पंड चुकी हुई है, भावें निरंकार दी प्रकृति ने यह नहीं चाहिया, पंड उपर ही चलती रही, पर फिर भी इस संसार ने तो पंड रख ही दिती ना वक्त दे बादशाह ने। भावें चक्कियां आपनू नहीं चलानियां पईयां, पर बादशाह जालम बादशाह ने तो दे दिते ना दाने, भाई बह के पीसी जाओ, उचारण करो श्री वाहिगुरु। पर संसार नू बादशाह नू सीधे रस्ते पा दिता धन गुरु नानक पातशाह। ही एक संसार विच ऐसे अवतार होए हन जिन्हां ने बाबर नूं कहा कि तू बाबर नहीं तू जाबर है, और याद रख तू रहम दी कलम नहीं वारिया, तेरे ते भी अकाल पुरख वाहिगुरु खुदा कदे रहम दी कलम ना वाहेगा। तां बादशाह दे नैन कटोरे बाहर आए, ओ रब दे फकीरा, ओ रब दे रूप, ओ खुदा दे रूप, मेरे ते रहम कर, कृपा कर, मेरे ते दया कर, मैनू सीधे रस्ते पा दे। तां धन गुरु नानक पातशाह जी ने राज जोग करन लई कहा, आख्या जे तां प्रजा दी सेवा करदे रहोगे, सच दी किरत करदे रहोगे, तुहाडा राज अटल रहेगा, ते नहीं ते भाई फिर असी मोड़ लवांगे। उचारण करो श्री वाहिगुरु। जदों बादशाह औरंगजेब ने जुलम दी अत कर दिती, शरमद वर्गे फकीरां दा कतलेआम, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं शहीद करना, ते होर अनेका उग्र पाप जदों कीते, ते फिर किथे है भाई अज? अज ओही बादशाह औरंगजेब दी कबर ते कोई दीवा जगाउण लई तैयार नहीं है। मुजावर बैठा हुंदा है, कोई 2 रुपए 4 रुपए देवे तां अंदर जाके दर्शन करा देंदा है, नहीं तां कहिंदा जदों मैं जांदा हां बादशाह औरंगजेब दी कबर ते मेरा अंदर जलन लग

फिर सोई। दर्शन दृष्ट ध्यान धर, दर्शन दृष्ट ध्यान धर, गुर मूर्त होई। दर्शन दृष्ट ध्यान धर, गुर मूर्त।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उपदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है

रंग अनरेक भेख को कह न सकत के अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अब तोज कही जय कोट

पानी के बहुत नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पाछा सतगुरु जी अपने मुखार बिंतो अपनी रचना तो इना बचना दा उच्चारण कर देने हजूर फरमान कर देने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेहे कितां दा जोड़ नहीं साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उना जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकने साहब कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहंदे ने

पहला मार्ग, पहला रास्ता, पहली जुगत। सतगुरु कृपा करते ने साहब धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कहते ने प्यारे आ, कदी मच्छी नू देख ले, उदा पानी नाल किन्ना प्यार है, उदा जीवन ही पानी है। एक खिन भी ना धीरे एक पल, एक क्षण भी ओ नहीं रह सकती, दे जे पानी विचों कटदे हो ते भाई उन्हें मर जाने। जे तेरा प्यार इदां दा हो जाए गुरु नाल, इदां दा सुने किते तू गुरु नाल कर लवे ते तेरे जीवन विच पलटा ना आ जाए। साहब कहिंदे ने

जुगत साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाति बूंद दे पिछे पपी पपी प्या करदा साहब बाणी विच कहिंदे ने

है उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू नाम जपण वालियां नू सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजा शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उदी शरण विच आ जाए।

शिव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साई है। एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया, पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच हजूर।

गुरु नानक दी मोर लाके धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहंदे ने

जे भाई सत्ता समुद्रां दे पानी दी स्याही बना ले जावे। कलम करो बन राय सारे जंगल ते सारी बनस्पति दियां कलमां बना लिया जावे।

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार दिन तो आंदे ने एक घड़ी दिन समो को बहुत दयारे, ए मेरिया मालका एक घड़ी भी एक पल भी तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्या मालका कर कृपा मेरे दे।

भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा च तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पावन उपदेश जय देव नाम विप सुदामा तिन को कृपा पई है अपार। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भगत जयदेव का जिक्र करते हैं और ये पौड़ी भाई गुरदास जी की उच्चारण की प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज तुन गावे। भगत जयदेव जड़े उस परमात्मा दी प्रेमा भगती करते हैं जिन्ना ने गीत गोबिंद ग्रंथ लिखे। भगत जयदेव की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज है। जदों भी आप गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हां भगत जयदेव नूं भी असी मत्था टेकदे हां। भगत जयदेव बंगाल दे विच पैदा होए, एक ब्राह्मण सन और भगत जी बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच बयान करदे हां। अज आपां भगत जयदेव जी दे बारे विचार करांगे। आओ पहला इन्हां पंक्तियां नूं सारे रल के पढ़िए। प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज तुन

प्यास लगी पर लागे चागे कोई पिंड नहीं कोई पानी नहीं, गर्मी नाल बेसुरत होके धरती ते डिग पए। ते साहब जी बाणी विच बयान कर

नित प्रत पाले, प्रेम सहित गल लावे, एक शब्द है प्रभ कीजे कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मुए कब गल लावेंगे। कदों वो दिन आएगा जदो तू मैनु अपने गले लावेंगा, गुरु दे गले लगी है सारा शरीर पवित्र हो जांदा है, ते जे गुरु ग्रंथ साहब जी दे गले लगी है तन भी पवित्र ते मन भी पवित्र। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम।

प्रेम सहित गल लावे। छोटी उम्र दा कोई 10 साल दा ये बच्चा पता नहीं कौन सी जो इस दे नाल नाल अज गाउंदा आ रहा है। प्रेम सहित गल

सकदा है। साहिब कथन करदे ने कि परमात्मा नाल मिलाप ते हर कोई मनुख चाहुंदा है कि मेरा परमात्मा नाल मिलाप हो जाए, मेरा संबंध जुड़ जाए। पर किवें

ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेडे बोल बोल की मैं तेन अपने आप ते मोहित कर लवा ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है मैं ते अवगुणा दा परे टकना के परमात्मा रूप

तो धनवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा

दो मित्रां नूं आपस विच कम पे आ। एक मित्र ने किया, लै मित्रा मेरा कम करना ही, कह लगा चंगा कर देवांगा। समा पै गया, भुल गया, ना कीता। एक दिन मुलाकात हुई।

फिर तुसी दसो कि अपने अवगुण किवें बख्शाए जा सकते ने। वो सतगुरु साडे अवगुण बख्श भी देवेगा। भाई साहब कहते ने, मैं विश्वास नाल कहना वा कि हे मनुख तू अवगुण करने छड़ दे, ओ परमात्मा तेरे अवगुण बख्श देवेगा। ऐसा नहीं कि अवगुण भी करी जाए ते नाल दी नाल बख्शाई भी जाए, नहीं एक दिन तौबा कर ले, ओ ते बख्शन जोग है ही, उन्हें ते बख्शते रहना है। पर ऐसी गल नहीं कि तू अवगुण करदा ही चला जावे, नहीं तू तौबा कर, सतगुरु दा सिमरन कर।

गुरमुख बिरले जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच आख रहे हैं, जो शायद साडे कदी ख्याल च भी ना दे गुरु बाबा जी साडे जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां अपने वल्लों तां असी सही ही जींदे पर गुरु बाबा जी दी ऑब्जरवेशन साडे जीवन दे प्रति ए है कि जीवन की बिद ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नूं नोट कर लो तो लिख के ते हर वेले सामने रखो ताकि ए सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हां फिजिकली, बेशक असी इंटलैक्चुअली भी ग्रो हो गए हां, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हां, बेशक असी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दे युग दे विच जी रहे हां, पर गुरु बाबा जी दी निगाह दे विच, गुरु बाबा जी दे ख्यालां दे विच आले सानू जीना ही नहीं आता। तो कितनी वड्डी गल है, और इसनु जो ध्यान दे नाल सुनेगा उस दे अंदर ए विचार ए लाइन एक तूफान उठा देगी, एक टर्मोइल ले आएगी, एक सोच विच इंसान नु जरूर पाएगी कि सच मैनु जीना नहीं आता, कि मैनु जीना ही नहीं आता। जे मैनू जीना ही नहीं आता फिर मैनू आंदा की, फिर इसका अर्थ यह होया कि जब गुरु बाबा जी आखते हैं कि जीवन की विध ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती, जीना ही नहीं आता, जीवन की कला ही नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हां वो गलत नहीं होएगा। फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हां सही करता हां वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी दे नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नू एक दे वंडर कीता होएगा कि मैनू जीना आंदा भी है या नहीं, जीना आंदा भी है या नहीं। मेरे ख्याल च असी ए सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल दे विच असी अपने प्रति ए डाउट भी नहीं कर सकते कि सानू जीना नहीं आता, बिकॉज वी नो हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कुक, हाउ टू ईट, हाउ टू सोशलाइज, हाउ टू कम्युनिकेट, सब कुछ सानू आता है, तो फिर असं किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विध ना है, जीन की विधि ही नहीं आती। गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन में हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नूं
ओ रबी नूर रबी आत्मा जो साडे जीवन नू देखदी है कि उपरों उपरों तो बहुत फले फुले हन, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन विच की है। आप आशा जी की बात सुन दे, मैं आपको फिर सुना देना। फलिए फुलिए बपड़े विचारे देखने बहुत फले फुले पे हैं, प्रॉस्परस हैं, वेल टू डू। फलिए फुलिए बपड़े भी तन विच स्वा, पर अंदर तन दे विच स्वा है, कुछ भी नहीं राख। पर इंसान दे वास्ते बहुत चोट वाली गल है कि मैं और मैनू अज ये सुन मिल रहा है कि मैनू जीण दी ही विधि नहीं आती। अज कोई मैनू ये कह रहा है कि मैनू जीना ही नहीं आ। आप जी ने कितनी दफा इस पंक्ति उत्ते कदे पाउंडर किया होगा। ईमानदारी दे नाल अपने अंदरों ये जवाब लभो कि कितनी दफा ये गल सुनन मिली है, कितनी दफा ये गल ही सुनन मिली है, कितनी दफा किसी ने यह पॉइंट ही रेज किया है जा सानू अवेयर करवाया है कि तुहानू तो भी हले जीना भी नहीं आता। पर असी आके महाराज जी नमस्कार कर सकते हैं, हुण महाराज जी असी चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि साडे गुरुदेव हैं। अपने गुरुदेव नू असी क्रॉस भी नहीं कर सकते, उन्हां दे नाल असी डिसएग्री भी नहीं कर सकते कि महाराज जी नहीं आपने लिख कर दिता है, पर ऐसी भी कोई गल नहीं है, जीना सानू आंदा है, यह भी असी कह नहीं सकते क्योंकि सानू पता है कि जो गुरु बाबा जी आखते हैं त्रैकाल सत। सो अज वो मौका है कि असी, मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उत्ते एम्फेसिस पा के कही होए कि साड़ी सिचुएशन ए है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड वी आर, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल वी आर, नो मैटर व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, बट द बॉटम लाइन इज वी डोंट नो हाउ टू लिव। सानू जीना ही नहीं आता, जीवन की बिदना है। प्यार नाल इस मंत्र में सुनो।

ही गवा दिता है, लाइफ वेस्ट गई है, इसनु जीना ही नहीं आया, इसकी यात्रा सफल नहीं हुई, ये विचकार ही कितने खो गया है, अपना जन्म इसने जो है वो वेस्ट कर ले। आज दे कीर्तन का यह नुक्ता इस लड़ी का आप जी नाल लेके जाओ, याद रखो, दिल च वसा के जाओ, अपने आप से क्वेश्चन करो कि अज असा सुनिया है गुरु महाराज जी की बाणी दे विचों कि वो आखते हैं कि सानू जीना ही नहीं आता, जीवन की बिदना है, सानू जीना ही नहीं आता। मैरिड लाइफ साड़ी सक्सेस नहीं है, बच्चों के नाल साड़ी सक्सेस नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड दे विच साड़ी सक्सेस नहीं है। मैं उन्होंने उत्ते हूं गुरबाणी दे आप जी विचार सुनावांगा कि मैं क्यों आ गया। घरेलू जिंदगियों दे विच साड़ी कामयाबी नहीं है, किसी भी एरिए दे विच कहिंदे तुसी कामयाब नहीं, जे तुसी बहुत सोचते हो कि बहुत एलीगेंटली रहते हो, बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी के वस्त्र पहनते हो, जो तुम सोचते हो कि तुम बहुत अच्छी तरह जीना आ गया है, तो बाबा जी उस उत्ते कॉमेंट करते हैं और प्रेम नाल थोड़े जे प्रमाण सुनो। साड़ी घरेलू जिंदगी कहते हैं

बहुत प्यारी गल आ समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किवें पूरे होंदे हैं, मैनू सुख इस तो किवें मिलता है, ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किवें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदियां हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरियां नहीं होंदियां तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आए, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे को दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचने के वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जो पूरी नहीं होंदिया तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जो मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तो जीना ही नहीं है। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आता, वट अबाउट ऑल दीज मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, इतनी डिवेलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, तो आखदे हो जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान दे रोगों का इलाज कर ली, इतने वड़े वड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत वड़ी चीज नहीं है, कितने कितने भयानक रोग जो हैं उन्हां दा इलाज आसानी दे नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोस अच्छी तरह हो सकता है, तो तुसी आखदे हो जीना नहीं आता। महाराज जी आखते हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू जीना आ गया। महाराज दसो, एक शिष्य पुछता है सच्चे पातशाह दसो फिर किवें नहीं जीना आ गया, असं तो सोचते असं बड़ी तरक्की कर गए हैं, असं डॉक्टर बन गए हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुसी आखते जीना नहीं है। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है, कहते हैं

0: सोहंत
1: सोबह अनंत
0: कटकट
1: व्याप रहा भगवंत
0: तन्मय
1: आकाश प्यार
0: सर्वलोक।

उदत जाती जिनसी रंगी उदत जी जहां उदत नेकियां उदत बदियां उदत मान अपमान उदत पौन पारी बैसंतर।